आज हम बड़े आराम से कहते हैं ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, इस तरह हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हैं। कौन सुन रहा है? कौन सुना रहा है? कौन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है? हम ही हैं। कोई आसमान से मखलूक तो नहीं उतरी हुई जो दूसरी मजलिसें करा रही है, कोई और तो नहीं है ऐसी मखलूकात जो खलाई मखलूकें उतर रही हों तो आप बोलें जी नहीं, हम खुद हैं। हमारा शऊर कम हो गया है जो आज आपको मेंबर से अजीब अजीब सी गुफ्तगू सुनने को मिल रही है, ये हमारा शऊर है। असल में आपके अंदर की ख्वाहिशात हमारी जबान से बाहर आती हैं। अब आप मसलन जी इनको मत बुलाइए, ये मौलाना तो तबलीग करेंगे, ये मौलाना तो ये करेंगे, मौलाना तो वो करेंगे, अब किसको बुलाएं? तो उनको बुलाएं। क्यों? क्योंकि असल में आप खुद जो सुनना चाहते हैं आप उसको बुलाते हैं। ये आपके अपने ऊपर मुनसर है, वो आप अपने घर में मजलिस कराएं, आप अपनी मोहल्ले में मजलिस कराएं, तो अगर आपको कोई शख्स बोले कि मतलब ये तो सही नहीं पड़ता, तो यकीनन आप ही में से किसी ने बुलाया है, खुद तो कोई नहीं आया। वो आप मुझे बोलें जी आप मौलाना साहब खुद ही, मैं तो खुद नहीं आया, मुझे तो ये जवान बच्चे पिछले 2-3 साल से बुला रहे थे जो अल्लाह ने तौफीक दी पाकिस्तान आने की, तो मैं आ गया, वरना ये बुला रहे थे तो मैं आया। वो नहीं बुलाते मैं नहीं आता। यकीनन आपने बुलाया। अब जब आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे जानते हैं कि ये कैसा शख्स है, ये क्या पढ़ेगा। यकीनन जिन्होंने नहीं सुना हुआ उनके लिए अलग है, लेकिन जो जानते हैं, जो बुला रहे हैं, वो तो जानते हैं ये कैसा शख्स है, तो यकीनन वो वही पढ़ेगा जिस तरह आप उसको जानते थे। तो अजीजाने मोहतरम, आज बहुत आसान है उंगली उठाना, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो असल में हमने खुद किया है तो हो रहा है। अगर आप सही आज़ादारी को कायम रखें या रखते तो ये हालत ना होती आज। वो हमें लज्जत लेने की आदत हो गई थी मेंबर से, मेंबर से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा वो मौलाना साहब वाह वाह ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। वो आप मज़े लेने आए हैं मजलिस के अंदर, नहीं क्या करने आए हैं? आप पहले डिफाइन करें कि मजलिस में आए क्यों हैं, मजलिस में आया क्यों जाता है, मजलिस बर्पा क्यों होती है, मजलिस का मकसद क्या है, मजलिस किसके नाम पर होती है, और वो शख्स कौन था कि जिसके नाम पर मजलिस बर्पा की जा रही है, वो शख्स कौन था जिसने करबला में कयाम किया, वो शख्स कौन था जो इस शख्स के मुकाबले पर था। ये सारी चीजें आपके लिए वाजे होनी चाहिए। वो अगर आपके लिए वाजे नहीं है, और यकीनन मजलिस वाजे करेगी, मेंबर वाजे करेगा, लेकिन अगर आज हम इस मजलिस या मेंबर को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो कसूर किसका है? अज़ीज़ाने मोहतरम, कसूर हमारा है, हमारे अपने नफसानी ख्वाहिशात हैं जो जहूर कर रही हैं। अगर आज आप बोले बस मजलिस अच्छी हो जाए, कैसे अच्छी हो? रश हो, न्याज बहुत अच्छी हो, यही होता है ना हमारे यहाँ। तो जाहिरी बुरी बात नहीं है, आप बेहतरीन न्याज दें, जितना अल्लाह ने आपको दिया है आप बढ़ चढ़ कर दें, मौला के मामले में कंजूसी ना करें। ये अलग खोरा बात है, नहीं जी ये तो न्याजों में इतना नहीं, नहीं दें न्याजें। इस्फहान का एक शख्स था, एक आलम दीन ने ख्वाब बयान किया कि जैसे यहाँ मजलिस कराते हैं, वहाँ मुतवल्ली था और वो हमेशा स्पॉन्सर करता था, पैसे देता था जो भी खर्च, तो उसे अंजुमन ने कहा कि जी खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो उसने बोला मसला नहीं है, उसने बोली हमेशा से ज़्यादा हो गया है, कहना नहीं मसला। उसने चेक दिया और साइन करके ब्लैंक चेक दे दिया कि आप जो भी ये खर्चा लिख लो। तो आलम दीन जो वहाँ पे था उसने ख्वाब में देखा कि रोज़े कयामत है और लोग सफ़ों में लगे हुए हैं और करबला के दरवाजे पर, जन्नत के दरवाजे पर मलाइका खड़े हुए हैं, उनके हाथों में फाइलें हैं और वो जो शख्स आता है उसकी फाइल जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देते हैं, इमाम उस पर साइन करते हैं और वो अंदर चला जाता है, जिसको नहीं करते हैं उसे हटा देते हैं। जब इस शख्स की बारी आई तो इमाम ने फाइल ली और बगैर देखे साइन कर दिए, तो मलाइका ने कहा मौला इसका अमालनामा तो देख लें, इसके काम तो देख लें। कहा जो हमारी राह में बगैर देखे देता हो हम भी उसके अमाल को नहीं देखते। अजीजाने मोहतरम, ये इमाम हुसैन का मामला है, अभी तक हम अपने मौला को समझ नहीं पाए। मसला यह है कि हमने मौला को, हम कहते तो हैं कि मासूम है, खुदा ने इंतखाब किया है, लेकिन इस पर हमें अभी यकीन नहीं हुआ, अपने वजूद से यकीन नहीं हुआ। हम भी समझते हैं खूब खूब एक शख्स हमारे जैसा, मतलब ना कि अपने जैसा, मगर हम उस मारिफत तक नहीं पहुंचे इमाम की, जो इमाम की मारिफत हो, जिसे इमामत कहा जाता है, वो इमामत के जो नबूवत को बचाने के लिए खुदा ने भेजी है,
ہم اس امامت تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک ہمارا

दुश्मन जानता है, दुश्मन को आप हल्का मत समझें। कुरान कहता है उदुवुम मुबीन, सख्त तरीन दुश्मन है तुम्हारा शैतान, सख्त तरीन। शैतान कहाँ है हमें क्या पता, हमने तो कभी शैतान को देखा ही नहीं, क्योंकि शैतान नज़र तो आता नहीं है। हम खुद शैतानियत में इतने गुम हो जाते हैं कि हमें अपने अंदर का भी शैतान नज़र नहीं आता। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं जवानों से, उल्मा बुज़ुर्गों से तो मैं माजरत के साथ कि मुझसे ज़्यादा मजालिस सुनी, मेरी उम्र से ज़्यादा लोगों को सुना, मैं जवानों के लिए आया हूँ। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर हम अपने वक्त के इमाम को इस करबला से उठकर नहीं पहचान पाए तो फिर कोई और जगह नहीं है इमाम को पहचानने की, कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको इमाम ज़माना से मिलाए, यही करबला मिलाएगी आपको। हम इमाम से मिले, हम इमाम के लिए अपनी चीज़ों को सही करें। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम प्रैक्टिकली आज़ादारी से अपने अंदर तब्दीली लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब अगर तब्दीली की बात करें तो ये समझ, मौलाना साहब आप नमाज की बातें करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, नहीं भाई, नमाज तो वाजिब है, नमाज तो आपने पढ़नी है, सांस लेना वाजिब है, सांस को रोक सकते हैं आप, नहीं रोक सकते, रोकेंगे मर जाएंगे। रूह को भी तो सांस चाहिए, रूह की सांस नमाज है, इबादत है, वो आप नहीं करेंगे रूह मुर्दा हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होने वाला, ये तो आपने करनी ही करनी है। आप खाना खाएं, पानी पिए, आप बदन को खुराक दे रहे हैं, रूह को भी तो खुराक चाहिए। रूह तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं, जैसे हमें पता ही नहीं चलता, हम समझते हैं बस यही बॉडी है, इसी को सजाओ, इसी को धुलाओ, इसी को बाल लगाओ, इसी को अच्छे कपड़े पहनो, बस यही है। अब इस बॉडी अच्छी हो गई तो अब हाथ में अच्छा, गाड़ी अच्छी, मोबाइल अच्छा, घर अच्छा, अब ये सब मादियत बढ़ती चली जा रही है। और ये सब वो है जो आप अपने बदन के लिए कर रहे हैं, रूह के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रूह को कितना टाइम दे रहा हूँ, रूह की खुराक पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर मैं नमाज पढ़ता भी हूँ तो मेरी नमाज, मैं आपको नहीं खुदा ना खास्ता, मेरी नमाज कितनी देर है, 5 नमाजों का आप टाइम निकाल लें तो पूरी नमाज का टाइम करके बहुत बहुत आधा घंटे में आप 5ों नमाजें पढ़ लेंगे, मैं बहुत खुले दिल से बता रहा हूँ। आधे घंटे में 5ों नमाजें हो गई, इस आधे घंटे में सजदे कितनी देर थे, आप सुगाड़ते जाएँ सुगाड़ते जाएँ सुगाड़ते ना, हमारे तो मेरे जैसे आदमी तो सेकेंड के सजदे में उठा बैठा उठा बैठा उठा बैठा। इस आधे घंटे में आप 5 से 10 मिनट भी सजदे नहीं है, 5 से 10 मिनट भी सजदे, और वो जो सजदे हैं उसमें भी दिल में कोई और है, दिमाग में कोई और है। यानी आप ये सोचें कि एक अशरफुल मखलूकात पूरे दिन में 1 मिनट भी अपने रब को उस तरह सजदा नहीं कर रही है जैसे खुदा चाहता है, तो प्रैक्टिकल है ये, क्या मैं वाकयन सजदा, एक सजदा, दिन का सजदा, उसको खालिक को अपने दिल को उससे जोड़ रहा हूं कि नहीं जोड़ रहा। अब ये इबादत है, ये इबादत है मेरे पास, यही तो तब्दील करेगी आपको। जितना आपका राबता आपके परवरदिगार से बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी तब्दील होती चली जाएगी, यही तो करबला है। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों आए, तौहीद के लिए तो आए थे, खिलाफत के लिए आए, किसी दौलत के लिए आए, स्टेटस के लिए आए, शोहरत के लिए आए, नहीं, इसी दीने इलाही को नाफिस करने के लिए आए थे, क्योंकि वो मिटता चला जा रहा था। इतने औज पर शैतान ने अपने कारिंदे को बिठाया, दुश्मन कितना प्लानिंग करता है, दुश्मन कितना शातिर है कि अल्लाह ने जब नबियों को भेजा तो उसने अपने हर नबी के मुकाबले में अपने बंदे को भेजा। शैतान ने भी ये किया, खुदा ने उसे मोहलत भी दी हुई है। हज़रत आदम के मुकाबले में शैतान आ गया, हज़रत नूह के मुकाबले में कौम आ गई, हज़रत इब्राहिम के मुकाबले में शद्दाद आ गए, बुत परस्त आ गए, हज़रत फिरौन देखें बोलता बोलते बोलते निकल जाएगा, बोलेंगे मौलाना फिरौन को भी हज़रत, हज़रत मूसा के सामने में फिरौन आ गया। सिबकत लसानी को उल्मा पे माफ़ कर दिया करें बाद वक़्त, हज़रत मूसा के मुकाबले में फिरौन, हज़रत ईसा के मुकाबले में खुद यहूदी, और फिर ये पूरी ताकत जमा कर कर शैतान आ रहा है, पूरी ताकत, और यहाँ पर परवरदिगार ने अपनी पूरी बंदगी और अबू

चढ़ गया कोई तो मैं देख रहा हूँ अजीब लोग हैं, मेरा एहतराम नहीं कर रहे, कोई तवज्जो नहीं कर रहे, इतना बड़ा उस्ताद है ये। कहते मैं खैर बड़ी मुश्किल से जहाँ पर इमाम थे पहुँचा, बहुत मुश्किल से पहुँचा, पहुँचा और मैंने इमाम के करीब जाकर इमाम को कहा, कहा मौला आपको आने की क्या ज़रूरत थी, हम थे ना

शुरू कर देते हैं। यहां पर शैतान दोबारा एक्टिव हो गया, उन्होंने बोला अब क्या करें। उसने फिर वही काम किया, उन्होंने बोला फिर मेहनत करो, मेहनत करो। उन्हें क्या किया, उन्हें बोला लोगों को खराब करो। वो कर रहा है सोशल मीडिया, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गुफ्तगू करूंगा कि जो इंडिविजुअल घर कैसे खराब हो रहे हैं। लेकिन उसने बोला भाई इसको, इनको कैसे खराब करो। तो उसने बड़ी मीटिंगें की और बड़ी ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, ये मौजूद हैं। उन्होंने बोला ये हुसैनियत जो है ये एक परिंदा है, इसके दो पर हैं, एक सुर्ख रंग का है एक सब्ज रंग का है। उसने परिंदे से तशबीह दी, कहा कि इसका जो सुर्ख रंग है वो हुसैनियत शहादत जहाद का है, और जो सब्ज रंग है वो उम्मीद इंतजार के कोई आने वाला है। अब ये दो पर से ये तशय्यो का जो परवाज है वो इतनी बुलंद है कि हम इसको नीचे उतार नहीं सकते। भाई इस परवाज, भाई इनको कुछ होता ही नहीं, इनको जितना मारो, ये कहते हैं वो शहदाए करबला के रास्ते में जितना मारना है मारते रहो, हमें कुछ नहीं होने वाला, शहदाए करबला का रास्ता है, इनको मारते रहो मारते रहो, ये कुछ नहीं होता इनको, और इनको जितना मायूस करो इनको बोलो, ये कहते हैं नहीं एक आने वाला है, एक आने वाला है, एक आने वाला है, एक आने वाला है। वो कह रहे हैं आज तक हम इस एक को दो नहीं कर पा रहे, ये एक ही बैठ के हुए हैं, ये कौन है एक। इस एक के लिए वो उतरा इराक, उसने इराक में लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछा वो कहां है तुम्हारा बारहवां जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वो ढूंढ रहा है। हमें भी रोक के लोग पूछते हैं आपको, आप बहुत बातें करते हैं, आपको पता है किधर है इमाम। वाकई इमाम के क्या नायब थे। एक इमाम का नायब ऐसा था, जबकि उसका भाई करीब था इमाम, लेकिन कहा कि उसको क्यों नहीं, कहा दूसरे को इसलिए नायब बनाया है कि अगर इसकी अबा के अंदर भी इमाम होगा और अबा को काट भी दिया जाएगा तो ये नहीं बताएगा इमाम कहाँ है। हम तो वैसे पूछ ले, हम तो वैसे ही बगैर बताए बताना शुरू कर देते हैं बातें, हमें पता ही नहीं है कौन पूछने वाला क्या पूछने वाला है। अजीजा ने मोहतरम, ये उसने सोचा, उसने बोला अब क्या करें, इस परिंदे को रोकें कैसे। कहा इसके परों को नुकसान दो, इसके परों को काटो, परिंदे के आप पर काट दें तो परिंदा गिर जाता है। उन्होंने बोला इसके परिंदों को नुकसान दो, और उसने बहुत प्लानिंग की। उसने बोला फलसफा इंतज़ार को मायूसी में, फलसफा इंतज़ार को कि हाथ पर बैठकर इंतज़ार करना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये नहीं करना वो नहीं करना, बस दुआएं पढ़ते रहो बैठ कर इमाम को याद, बस और कुछ नहीं करना। ये उसने किया, काफ़ी हद तक वो आपके सामने वो कामयाब है। उसने बोला दूसरा पर आज़ादारी हुसैनियत, खूब इसको ख़राब कैसे ख़राब करो, खूब मातम से शेर व शायरी से मेंबर पे ऐसे लोगों को बिठाओ कि जो इमाम हुसैन के मकसद की बात ना करें, उसको बिठाओ मेंबर पे। अब उसने काम किया, उसने कई साल काम कर कर कर कर कर यहाँ कौम पहुँच गई कि हमारे असातीद बड़े ताज्जुब करते हैं जब वो हम उनको बता दें ना पोस्टर वोस्टर, तो कहते हैं तुम्हारे मुल्क में सब अल्लामा हैं, सब अल्लामा हैं यहाँ। और अल्लामा आपको पता है, अल्लामा इज द हाइस्ट डिग्री, अल्लामा हौजे के अंदर कितने अल्लामा हैं आपको पता है तारीख के अंदर, अल्लामा तबा तबाई कुछ दिन, उससे पहले ऊपर जाएं अल्लामा हिल्ली, अल्लामा मजलिसी, और नहीं अल्लामा गई। अब इसी तरह आए तो अब आपको अल्लामा जवादी आमली, अल्लामा इधर हर आदमी अल्लामा, अल्लामा तो ये ऐन से अलिफ से ये किसी को नहीं पता अभी कौन सा अल्लामा है ये। अजीजाने मोहतरम आपको ये क्या किया, ये उसी ने तो किया है, ये वो कर रहा है। जबान ऐसी पैदा करो, उतार चढ़ाओ ऐसे हो, 25 बंदे खुद ही लेकर आ जाओ, नारे मारो, पकड़ पकड़ के बैठाओ। पंजाब में तो अजीब हालत है, यानी वो बंदा मसाइब पढ़ उन्हें नहीं बैठे बैठे शाह साहब का, अजीब आवाम तो तचना है। अजीजाने मोहतरम उसका उसको तो जो आप देंगे वही करेगी ना, आवाम तो तचना है, आप उसको जो सुना दें। तो ये उसने ऐसा काम किया कि आज आपको नतीजे बेहतरीन तरीके से नजर भी आ रहे हैं। लेकिन उस जो शख्स ये बात कर रहा था कि इन परों को नुकसान

जाओ ये परवाज नीचे लेकर आएगा। लेकिन उसने आखिरी बात की और उसने क्या कहा, उसने कहा मगर इस परिंदे ने एक जरा पहनी हुई है, एक शील्ड पहनी हुई है। वो शील्ड ऐसी है कि जब भी ये पर ज़ईफ़ होना शुरू हो जाते हैं वो शील्ड दोबारा पावर दे देती है। उन्होंने बोला भाई ये कौन सी शील्ड है, कहा ये विलायत का निज़ाम है, ये विलायत का निज़ाम है। तुम जितना ये जब तक मुश्तहदीन इस निज़ाम को लेकर चल रहे हैं ये परिंदे को कुछ नहीं हो सकता, ये जब गिरते हैं फिर फरवा, फिर गिरते हैं फिर पड़वा। उसने बोला आप क्या करो इस शील्ड को ख़राब करो, वो फिर शुरू हो गया और आज आपके सामने। लेकिन एक दुश्मन मकर करता है, एक अल्लाह मकर करता है। अजीजाने मोहतरम, दुश्मन कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, जो कर सकता है कर ले, जितना दम है कर ले, शैतान जितना कर ले। अजीजाने मोहतरम, कुरान कहता है हम अपनी हुकूमत को अपने वारिसिन को देंगे, ये कुरान का वादा है। और खुदा कुरान में कहता है ला युखलिफुल मियाद, खुदा अपने वादे की वादा खिलाफी नहीं करता। अब ये हम पर है, मैं वक्त मेरा बहुत तेज़ी से, मुझे एक और जगह भी पहुंचना है। अजीजाने मोहतरम, अब ये हम पर है यार, आपके सामने तस्वीर वाज़े हो गई कि मशा आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो सिर्फ तकरार और अपने सवाब कमाने के लिए आया हूँ, आप सारी चीज़ें जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। ये वाज़े हो गई कि ये काम हो रहा है और ये इधर काम हो रहा है। अब ये मेरे पर है कि मैं कहाँ हूँ, ये इम्पोर्टेंट है असल में, मुहिम ये है। हमें तो हाँ अच्छा मोहन साहब ये भी पता चल गया, ये पता चल गया, ठीक है चलें घर जाएं सो जाएं जाके, नहीं ये इसीलिए था कि आप कहाँ हैं, आप उधर हैं या इधर हैं। नहीं मोहन साहब हम तो हर जगह हैं, या हम दरमियान में हैं। दरमियान में कौन होता है, दरमियान में तो कोई नहीं होता भाई। नहीं, करबला दो ब्लॉक बताती है, या हक या बातिल, बस तीसरा कोई नहीं है। तीसरा शख्स करबला में कोई नहीं है जो ये कह रहा होगा नहीं मैं बैठा हुआ देख रहा था, मैं दुश्मन के साथ नहीं। जिन्होंने कुछ नहीं भी किया वो भी दुश्मन के साथ है। क्यों? क्योंकि जब अपने सामने हक देख रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हक की तरफ, हक की तरफ क्यों नहीं आ रहे? नहीं हम तो कुछ नहीं, हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं तो फिर रोजे कयामत जो छित्तर पड़ेंगे फिर हम भी देखेंगे, पढ़ेंगे। अजीजाने मोहतरम खुश ना हो, कयामत बहुत खतरनाक है, बरज़ख आलम कबर बहुत खतरनाक है मामला। अगर आप इमाम हुसैन के नाम पर घर से निकले हैं और इमाम बारगाह आए हैं तो यहां से जब उठे तो हुसैनी होकर उठे, हुसैनी होना चाहिए किरदार में, रफ्तार में। ये ना हो कि मजलिस मेंबर पे कुछ और है, घर में कुछ और है, बाजार में कुछ और है, खलवत में कुछ और है, तन्हाई में कुछ और है। नहीं, फिर किरदार बने। इमाम ने इसलिए इकदार की जंग नहीं की थी, इक्तदार की जंग थी। इमाम को ये नहीं हुकूमतें नहीं चाहिए थी, इमाम को किरदार चाहिए थे, इकदार वैल्यूज चाहिए थी, वैल्यूज की जंग है। आज दुश्मन आपसे भी वैल्यूज छीनना चाहता है। जाने मोहतरम, दोबारा हम कोशिश करें कि अपनी फहम को बुलंद करें, अपने आप को आगे लेकर आए और असल मकसद से गाफिल ना हो। दुश्मन पूरी ताकत कर रहा है, मैंने आज खुलासा सा खींच दिया आपके सामने, कल इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा और चंद दिन जो भी हैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसी नीयत से आए कि हम कुछ लेने आए हैं और तब्दील होने आए हैं। अगर तो तब्दीली नहीं हो रही है तो फिर मेरे अपने अंदर मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह हम उन मसाइल को भी डिस्कस करेंगे ताकि हम उन मसाइल को, उन रुकावटों को अपने ज़ात से हटाएं। अजीजाने मोहतरम, 12 मुहर्रम लुटा हुआ आपने सलाम में मरसिए में पढ़ा सुना, कारवान बड़ी रौनक के साथ करबला पे उतरा था, खेमे लगे थे, हमारी सैयदजादियाँ बड़े एहतराम के साथ उतारी गई थीं, बहुत मान के साथ बनी हाशिम अपने खेमों के पहरे दे रहा था। मगर जैसे ही बनी हाशिम के चराग बुझते गए,

अब्बास वफाओं का पैकर है, अब्बास जलाल हैदर है। हर दिल में धड़कता हर दिल में धड़कता है गाजी अब्बास का चर्चा घर घर है। अब्बास का चर्चा

0: अगर किसी के मुंह से निकला के नायला मक्के से वापस आ गई है तो याद रखना कि बिना किसी रियायत के एक एक का सर कलम कर दूंगा। आज से बिला वजह घर के बाहर जाना मना है, किसी भी अपने या अजनबी से बात करना मना है। आखिरी बार तुम लोगों ने नायला को शहर के दरवाजे के बाहर देखा है, वो भी शहर से निकलते हुए। समझ गए? समझ गए?
1: ठीक है आहद, हम में से कोई भी नायला के बारे में बात नहीं करेगा। किसी ने भी नायला को नहीं देखा। जाओ बाहर, सुबेदा बच्चों को साथ ले जाओ। आइए चलो बच्चे।
0: बहुत ही डरा धमका कर और दिरहम और दिनार की लालच देकर इन सब की जुबान बंद की है ताकि उनके घर में अमन और अमान रहे। लेकिन तुम इनकी माँ या बहन नहीं हो, इन सब से अलग हो। तुम उसके साथ थी, उसकी हम सफर थी। अगर अमर को पता चल गया तो वो इस घर को बर्बाद कर देगा और तुमको ढूंढ निकालेगा।
1: हिलाल कहाँ है?
0: वो चाहे जिस जहन्नुम में भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो अहम नहीं है। वो मेरे लिए अहम नहीं है।
1: आहद, नाहिला से कहो कि तुमने एक बाप का हक अदा किया है और इब्ने ज़ियाद से उसके लिए बात की और अमीर ने उसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं।

0: विश्वास के मकदामात को मैं जानता हूँ। तमाम रास्तों को उसने बंद कर दिया है।
1: कौन सा रास्ता? जो गुनाह उसने किया ही नहीं उसे क्यों अपने सर ले ले? कोई खत नहीं था उसके पास, अगर होता तो मुझे मालूम होता।
0: नायला मुझसे झूठ मत बोलो,
2: अपने बाप से झूठ मत बोलो।
3: बहुत मुबारक हो जनाब औहद, बोला तुम पर के इब्ने जियाद पर और तुम्हारे बाप पर लानत, तीनों पर एक साथ।
0: बहुत मुबारक हो।
4: चौकन्ने रहो, नजरें जमाए रखो।
5: इन सिपाहियों के चले जाने के बाद मैं इनका पीछा करूंगा, वो यही चक्कर काटेंगे। जब उधर आने लगेंगे तो मैं आवाज लगाकर बता दूंगा, उसके बाद तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है।
6: आग बढ़ते ही हम हमला करेंगे। यार चल।

0: बानो जान, कोई परेशानी है? बोलिए, फिर कहाँ का इरादा है? आपके वालिद की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है, इतनी रात में कहाँ चली आप?
1: तुम भी इंसान हो, सफर से आई हो, थकी हुई हो, जाओ सो जाओ। हिलाल की फिक्र में दिल में आग लगी हुई है।

0: तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? देखो तुम्हें नींद आ रही है, उठो मेरी जान, जाओ जाकर अंदर सो जाओ।
1: बाबा के इंतजार में है, वो आ जाए तो घर जाएंगे।
0: घर किस लिए जाना है? आज रुक जाओ, कल मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगी।
1: अलवान यहाँ नहीं सोता, हमें जाना ही होगा।
0: अलवान, जब से आई हो मिले नहीं हो तुम, ना जियारत कबूल कहा, ना गले लगाया, ना बात की।
1: गूंगा हो गया है, कुछ बोलता नहीं। कसम से जब से आप मक्का गई हैं, दादा से नाराज है, उनसे बात नहीं करता है, सबसे खफा रहता है।
2: आते हैं फलवान,
3: चलो।
0: रुकोगे नहीं?
3: आ जाओ, चलो।
2: अजीब बात है, वहां देखो

0: لا إله إلا الله.
1: ले चलो जल्दी.
2: आग भड़क उठी है, मदद करो, मदद करो. ए, क्या कर रहे हो तुम? जनाजा उठाते हो?
3: जल्दी जाओ.
2: मैं छोड़ूंगा नहीं.
4: भाइयों यहाँ आ जाओ. जनाजा चोर यहाँ है.
2: जनाजा चोर यहाँ है.
4: सिपाहियों जल्दी आ जाओ, चोर भाग रहा है. आ जाओ.
0: कहाँ जा रहे हो?
1: बाबा मैं अब लड़ने की ताकत नहीं रही.
0: आओ चलते हैं, यहाँ रहना अब ठीक नहीं.
2: आप जाइए जनाबे आली.
0: जल्दी करो.
2: Come on!

0: Salim.
1: Adi, chalo chale. Adi.
0: Meesa mein Tammar ka janaza kya hua?
2: Chura kar le gaye.
0: Nalayak!
1: تشریف لائیے جناب احد کمرے کے اندر آپ کے منتظر ہیں سلام حج قبول ہو نائلہ بتایا ہی نہیں کب واپس آئی ہو یہ رسم دوستی کے خلاف ہے کہ سفر سے لوٹو اور اپنوں کی خبر بھی نہ لو بولو कुछ हुआ है क्या जनाब अवहद कहाँ है
3: नई खबर क्या लाई हो शमीम इस बार किसे बेचकर अपनी जेब भरने यहां आई हो हाँ बेवकूफ ये समझती थी कि तुम्हारा दिल मेरी हालत पर तड़पता होगा मैं भूल गई थी कि तुम्हारे दिल में कीना व हसद है जब तक मुझे बर्बाद न कर दो सुकून से नहीं बैठोगी
1: तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो
3: पहले ही दिन जब हिलाल का नाम तुम्हारी गंदी ज़बान पर आया था मैंने उसी वक्त कहा था कि तुम उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हो अब नौबत आ पहुंची है कि मेरे शौहर की जासूसी करती हो
1: बाबा को आने दो तब हम दोनों बात करेंगे
3: कहां इतनी जल्दी भी क्या है मेरे बचपन के साथी तुम्हारा सर फूर दूंगी शमीन तुम्हारी ऐसी आबरू रेजी करूंगी कि जब तक ये दुनिया बाकी है तुम्हारा नाम बुरे लोगों में लिया जाएगा समझी तुम
1: इस शहर में कोई भी तुम्हारे अलावा हिलाल से शादी की आरजू नहीं रखता था जिसके पीछे तुम पागल थी खराब माल उसके मालिक को ही मुबारक हो ये क्या कर रहे हो
3: ध्यान रखना कोई अंदर ना पाए

0: मैंने बता दिया था कि आप आई हैं। जनाब औहद आने वाले हैं, उन्हें बस थोड़ी देर लगी।
1: पैगंबर ने कहा हमने नहीं सुना। हम सब ने कुरान पढ़ा लेकिन समझा नहीं कि जानो माल और औलाद तीनों अजीज हैं और तीनों इंसान के लिए इम्तिहान का जरिया है। अपने मर्दों पर तवज्जो दो, खास तौर से उम्मे हसन। तुम ऐसा ना हो कि तुम्हारा शौहर रईसों के डर की वजह से अपना ईमान और अकीदा छोड़ दे।

0: क्या आपको लगता है कि अरीफों को भी उसमें घसीटा जाएगा?
1: अब तक तो ऐसा ही हुआ है। जब तक हम लोगों के होश संभलते हैं और बेदार होते हैं, या तो हम लोगों को फिक्र और तंगदस्ती का सामना करना पड़ता है, या तलवार और जंग का सामना।
0: आप पर कुर्बान जाऊं, आपके घर में भी मर्द हैं, जानती हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। जो एक बार सोच लेते हैं करके रहते हैं। क्या आपके हिलाल ने वही किया जो कुछ आपने चाहा?
1: मान लिया कि मैं एक बुरी माँ हूं, लेकिन आप कूफा की औरतें पहले ये साबित कर चुकी हैं अपने शौहरों को अपने बस में कर सकती हैं। क्या कूफे की औरतें नहीं थी जिन्होंने हुकूमत के कारिंदों और शाम के सिपाहियों के डर से मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ दिया? तुम सब भूल गई हो, ये कूफे की ही औरतें थी जिन्होंने अपने शौहरों को लिबास से पकड़कर खींचा और एक एक करके उन्हें सिपाहियों के दरमियान से बाहर निकाला, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
2: इब्ने ज़ियाद दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है, उसका पेट कभी सीर नहीं होता। वो ऐसा खूंखार है कि कत्ल करने में किसी किस्म का डर खौफ नहीं।
1: हमारा, तुम्हारा और हमारी औलाद का खून औलाद फातिमा के खून से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर डर कर बैठेंगे तो अंजाम बुरा होगा। वाज़ेह है कि ये लोग इमाम को कत्ल करना चाहते हैं।
3: काश के हम लोग खुद तलवार उठाएं और अपने इमाम के लिए रास्ता हमवार करें।
1: तलवार के साथ गैरत हो तो ही काटती है, वरना फिर से दारुल हुकूमत का माजरा होगा और मुस्लिम की तन्हाई। तुम सभी हमारी बहनें हो, आओ हम सब मिलकर दुआ करें कि दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से गैरत खत्म ना कर दे। अगर करार ये है कि कूफे की गलियां शियों के खून से रंगीन हो और इमाम के हुजूर का सबब बने, तो खुदाया इस घर के अफराद के हिस्से में शहादत लिख दे। खुश आमदीद मेरी बहू। खुश आमदीद। तुम्हारे काफिले के पहुंचने की खबर नहीं मिली। मेरा हिलाल कहाँ है?
4: इब्ने ज़ियाद की कैद में है। उनका कहना है कि तुम्हारे शौहर हुसैन इब्ने अली का खत लेकर गया था, बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले गए उसे।
0: तुम्हें बहुत मुबारक हो सामिया कि तुम्हारे सारे मर्दों का हाथ अली के हाथ में है। अपने बेटे की फिक्र ना करो, ये मिट्टी सर्द है, साल भर भी नहीं गुजरेगा कि सारे गम भुला देगी।
4: हमारी जिंदगी उजाड़ कर रख दी। हमने क्या गुनाह किया था कि ऐसी शर्त रखकर हमें बर्बाद कर दिया? आपके दिल की आग ठंडी हो गई? अब जब आपके बेटे को कैद कर लिया है तो आपकी जन्नत भी हमवार हो गई।
1: ला इलाहा इल्लल्लाह।
4: बेयारो मददगार एक दुल्हन अपनों और गैरों की नजरों से बचती हुई मक्का से कूफा तक अकेली आई है, और आपने अपनी खुशी के लिए इस घर के आखिरी मर्द को दीन पर फिदा कर दिया।
1: इल्लल्लाह।
4: आपके बेटे ने नायला नाम की एक बेबस लड़की को पनाह दी, क्या ये कार्य सवाब नहीं?
1: मेरे बेटे ने औहद की बेटी से शादी करके रहमो मुरव्वत की ऐसी मस्जिद बनाई कि जिसके मिंबर के नीचे हर रात गुनाहे कबीरा करता है। मेरे बेटे ने ऐसी हां कही कि जिसमें कोई खैर नहीं थी।
4: आपने सही कहा, खैर उस शर्त में है जो इब्ने ज़ियाद ने आपके बेटे के सामने रखी है।
5: सलाम मुमानी जान, कैसी आप?
4: सलाम मेरी बच्ची।
2: सलाम, जियारत कबूल हो।
4: बासित की मौत का बहुत अफसोस हुआ।

तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? मेरी सियाह बख्त बेटी, मेरी बदबख्त बेटी कहती थी कि हिलाल जानता था, हिलाल जानता था, लेकिन उसने नहीं बताया। फिर भी

0: उसने शादी की। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा शादी करके आबाद होगा।
1: खुदा की रहमत हो इस घर के लोगों पर। तुम जवान हो, ज्यादा बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन सामिया का ज्यादा ख्याल रखना। इंशाल्लाह।
2: सलाला, तुम्हारा भाई झूले में अकेला है, उसे झुलाओ ताकि सो जाए। बदबख्ती इस घर से जाने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन तुम्हारी किस्मत आहिया की किस्मत की तरह फूटी नहीं है। यानी तुम्हारा बाप तुम्हें मेरी तरह बेवा बनने का मजा चखने नहीं देगा। हिलाल ने सही जगह निशाना लगाया है।
3: कि ना ऐ मैं गुफ्तगू ना करूँ, इस माजरे की सबसे पहले मुझे शिकायत है। आखिरी वक्त तक तुम्हें किसी पर शक नहीं हुआ कि किसने तुम्हारे शौहर को फंसाया? हिलाल कैद कर दिया गया, तुमने खुद नहीं सोचा क्यों और कैसे हुआ ये सब?
2: तुम्हारी तरह मुझे आलम गैब की खबर नहीं है, तुम्हें तो हुकूमत के कामों की खबर है। तुम ही बताओ किस तरह और क्यों मेरे शौहर का खून बहाया गया?
3: इतनी मुतमईन हो और शैतान के गुनाहों को भी बईद और नामुमकिन समझती हो कि अपनी आस्तीन में छुपे सांप को नहीं देखा?
0: क्यों ढके छिपे बातें कर रही हो? कौन सा सांप हमारी आस्तीन में है? पहले इब्ने जियाद का शर और अब जासूसी की बातें? सही बात बताओ तो पता चले माजरा क्या है।
3: जिसने दोनों बार खुद की जासूसी की है वो इस वक्त हमारे घर में है। मैंने उसे घर में बंद कर रखा है। शमीम, शियों की जासूस शमीम है।
4: दरवाजा खोल दो।

0: जिस वक्त तुमने अपने कबीले से दूरी इख्तियार की और मेरी बेटी के साथ खड़े हो गए, मुझे समझ जाना चाहिए था कि बड़ा ही कट्टर दामाद हमारे पल्ले पड़ा है।
1: जहन्नुम में खुशामदीद अबू नईम।
0: आग की गर्मी ने अदब भुला दिया है।
1: मुर्दा को अदब से क्या काम?
0: तो मुर्दा हो तुम? ठीक है जनाबे हिलाल, इब्ने ज़ियाद के पास जाकर कद्र नशनास इंसानों की तरह सर ताज़ीम में झुकाऊंगा और कहूंगा कि मेरा दामाद आपकी मोहब्बतों की कद्र नहीं जानता, हमारी पनाह और मौत में से मौत का इंतखाब कर रहा है। सुनो, ये जमात किसी का लिहाज नहीं करती है, मार डालती है।
1: मैं अब जिंदा नहीं हूं, शहर में मेरी इज्जत व आबरू नहीं है, मेरा कोई खानदान नहीं है। एक बात तो तय है, अगर इब्ने ज़ियाद छोड़ भी देता है तुम नहीं छोड़ोगे।
0: बकवास मत करो, हुसैन मान जाएंगे, इसमें जर्रा बराबर शक नहीं है।
1: किससे डरूं? मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी के इन चंद दिन इसे नाकिस दीन पर बाकी रहूं।
0: यह बात जान लो जवान, कल तक अगर राजी ना हुए तो तुम्हारा सर सामिया की गोद में होगा।
1: मेरी मां को मुबारक हो, खुदा की जहन्नुम तुम्हारी दुनिया से बेहतर है।
0: मेरे बेटे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल इस काम के लिए राजी नहीं है, लेकिन नाइला के लिए अपने सर को झुका दो, उसकी जान खतरे में है।
1: नाइला से ईमान चाहता हूं।
0: इब्ने ज़ियाद जंग का इरादा नहीं रखता, सिर्फ हुसैन को डराना चाहता है। अगर जंग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसमें मुश्किल क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नाम लश्कर के साथ रहे, बस उसके माल के साथ रहो।
1: आज कोई शख्स और कोई भी चीज दुनिया में हिलाल के लिए अहमियत नहीं रखती। अपने अमीर इब्ने ज़ियाद से कह दो कि मेरा दामाद पागल हो गया है और हुक्म की मुखालफत कर रहा है।

0: मैंने सुना है कि वो सात लोग थे।
1: उनकी आकिबत बखैर हो, कूफे के मर्दों की बेरहमती उसका सबब।
2: मैंने सुना है सात आदमियों को पकड़ा है, एक एक करके सर कलम करेंगे ताकि लोगों के दरमियान दहशत पैदा कर सके।
3: इब्ने ज़ियाद के हुक्म से उस खताकार हमीद बिन अरफा के, जिसका लकब अबू साले है और उसका जुर्म मीसम तम्मार को फांसी से नीचे उतारना है, सब कान खोल के सुन लो, इसका सर कलम किया जाएगा ताकि उसके दोस्त और करीबी लोग अपना अंजाम भी अपनी आंखों से देख सकें। कूफे के कबीलों के सरदार कान खोल के सुन लें, खताकार कबीले के सरदार का सर काट दिया जाएगा ताकि तुम लोग जान लो कि जो लोग रात में इनके जिस्मों को अगर हाथ भी लगाया,
4: साले दिल मजबूत रखो, लिबास आजाउन कुदरत और हुकूमत के लालची लोगों की किस्मत में है कि जिन्होंने सबका जीना हराम किया। यकीन रखो कि तुम्हारे वालिद अली इब्ने अबी तालिब के मेहमान हैं, शक ना करना।
5: पाक दूध और हलाल गिजा जो अपने बेटे को खिलाया है उसने अपना काम कर दिखाया, उसकी खबर सुनी मैंने।
3: शुरू करो।
6: देख रहे हो, ये सब तुम्हारा किया धरा है, ना कि हुकूमत का। हुकूम के कानून के मुखालिफत और अमीर पर एतिमाद ना करने का नतीजा यही है। बेचारे अरीफ ने क्या किया है कि वो सजा भुगते। जब तक ये दुनिया बाकी है, इन बच्चों और औरतों की आहें इन खताकारों का पीछा करती रहेगी। एक आदमी गलती करता है और सजा सबको मिलती है। शाबाशी हो हम पर तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है?
3: तुम बेकार में चिल्ला रहे हो। चंद दिनों के बाद तमाम जंगजू मर्द और गैर जंगजू, बूढ़े और जवान, बालिग और नाबालिग, सबको उमर बिन साद के लश्कर में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा ताकि उनकी तादाद से दुश्मन की आंखें अंधी हो जाएं। सब जान लो कि किसी को भी सर उठाने की मोहलत नहीं दी जाएगी। इनके हाथ खोल दो।
2: अशहदु अन्ना अलियन वली उल्लाह।

0: तुम सिया बिल्ली की तरह हो, जाहिर कुछ और बातिन कुछ और। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी खातिर मैंने हिलाल को छोड़ा जबकि उससे मोहब्बत थी? क्या तुम भूल गई कि मैंने हिलाल के हाथ पैर जोड़े कि वो औहद की बदबख्त बेटी की पनाहगाह बन जाए? भूल गई सब? मेरे साथ ऐसा सलूक करती हो जिसने हमेशा खुद से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा? भूल गई?
1: तुमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने लिए किया, बिना वजह मुझ पर एहसान ना जताओ। तुम अच्छी तरह जानती हो अगर हिलाल से शादी की ख्वाहिश का इजहार करोगी तो मैं सबको बताऊंगी कि किस तरह मरियम मुकद्दस दर हकीकत यहूदा लानत की तरह है।
0: मुझे मालूम नहीं था, खुदा की कसम मैं नहीं जानती थी कि हिलाल मक्का खत

0: लेकर जाएगा। मैं क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए?
1: फिर बासित के खत का क्या? उससे भी बेखबर थी? नहीं ना, तुम्हारी जुबान ने उसका खून बहाया है, जानती हो?
0: मैंने जो भी किया अच्छा किया। तुम्हारा दिल उस आदमी के लिए परेशान है? अगर कराबतदारी और रिश्तेदारी की बात है तो तुम मुझसे ज्यादा करीब हो सामिया की कौमों कबीले के।
1: तुमने मेरे और हिलाल के दरमियान भी जुदाई डाली, लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। जाओ जाओ, अब आजाद हो तुम।
2: इतनी दुश्मनी और जहर कैसे छुपा रखा था तुमने?

0: ਕੱਟਿਓ
1: ਫੇਰ ਜਾਓ
0: ਅੰਸਰੀ ਕੱਟਿਓ
1: ਫੇਰ ਜਾਓ ਆਹੀਆ ਆਹੀਆ
0: ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈ
1: ਰੁਕੋ
0: ਕਰਦੀ ਹੈ
1: ਹਾਲ ਨਾ ਮਾਰੋ
0: ਵਰਾ ਅਗਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲ ਉਖੜ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਸੱਸੇ ਸੇ ਸਮਝ ਖਾਵਾਂਗਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਝੇ
1: ਬਸ ਕਰੋ
2: हाँ हाँ रो
0: ताकि हमेशा याद रखो
1: आहिया आहिया रुक जाओ आहिया खुदा के वास्ते रुक जाओ आहिया आहिया मेरी बात तो सुनो आहिया आहिया तुम्हारी कनीज बन के रहूंगी आहिया आहिया मुझे माफ कर दो आहिया मेरी बात सुनो आहिया तुम्हें खुदा की कसम तुम उनसे कुछ मत कहना
3: कान खोल कर सुनो आज के बाद अपनी नजिस जुबान पर मेरे शहीद शौहर का नाम न लेना समझ गई
4: क्या हुआ मेरी बेटी आहिया क्या हुआ इसे
1: हाँ? मुझे कुछ मालूम नहीं
4: कुछ भी नहीं
1: खुदा मुझे मौत दे खुदा ना करे बानो ऐसा हो मुझे कुछ नहीं हुआ है बानो बस एक दो दिन में ये जख्म हवा लगती रहेगी तो ठीक हो जाएगा बानो माफ कर दो

0: कुर्बान जाऊं, बाबा इसे खोल दे, इसे खोल दे। मैंने इसके लिए बहुत इल्तिजा की कि तुम्हारे हाथ खोल दें, लेकिन कबूल नहीं किया। मुझे भूल गए हो, जो देखते भी नहीं। अपने दर्द मुझे दे दो, इतना ज्यादा मुझसे बेजार हो।
1: मेरे तुम्हारे और मां के अलावा किसी को खत की इत्तला तक नहीं थी।
0: तो
1: उस दिन जब तुम मुसाफिर खाने में मां को खत लिख रही थी, सफर की सख्तियों के अलावा भी कुछ लिखा था?
0: मुझ पर शक कर रहे हो? जिसे खुद शिकायत है उसी से गिला कर रहे हो? तुम समझ

0: मैंने तुम्हें फंसाया है। इश्क का आगाज मेरे दिल से हुआ था, मैंने पनाह मांगी थी, ना कि तुमने मुझसे।
1: सोचा शायद सफर में तुम्हें मेरी बेहतर शनाख्त हुई और परेशान हो गई।
0: हाया करो, मैं यानी अली के दुश्मन की बेटी तुम्हारा खत जान पर खेलकर मदीना तक ले गई और उसके बाद उस खत को सही जगह तक पहुंचाया। मैंने तुम्हारी बात की लाज रखी और उसका सिला मुझे ये मिला।
1: उम्मे सलमा के हवाले किया।
0: मैं ना हुसैन की तरफदार हूं ना यजीद की। मैं दुनिया में बस ऐसा घर चाहती हूँ जहां तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी गुजार सकूं।
1: मुझे माफ करना। मैं ही शायद समझ नहीं पाया।
0: सिर्फ हमारी बात होती तो समझ लेती कि हमारे किस्मत में यही लिखा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस दफा मामला मुख्तलिफ है, तुम्हें इब्ने ज़ियाद की शर्तों को कबूल करना होगा।
1: क्या कह रही हो नायला? तुम तो जानती हो कि मैं जबरदस्ती किसी के सामने सर नहीं झुकाता।
0: इस दफा मामला अलग है।
1: कैसे अलग है?
0: तुम्हारी गर्दन पर इस बच्चे का भी हक है। तुम इसके बाप हो। मान गया है,
2: माफी चाहता हूं, लेकिन खुदा की कसम आज रात जब तक सारी हकीकत ना जान लूं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा। शमीन तो गूंगी हो गई है और उसका पूरा वजूद कांप रहा है, और आपका बर्ताव ऐसा है कि अगर आपका मेहमान ना होता तो शायद अब तक 100 बार मुझे घर से निकाल चुकी होती। गुरूब से कबल जब मैं पहुंचा तो देखा सामान बांधकर फरार होना चाहती है। कमरे में बंद कर दिया ताकि बात करे, लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। आपको मोहम्मद के खुदा का वास्ता, बताइए क्या हुआ है? शमीम ने क्या किया है कि बाजार में खड़े होकर तुम्हारी बेटी के सामने इल्तिजा कर रही थी?
3: बता दीजिए ताकि इन्हें सुकून मिल जाए। बताइए कि इनकी बेटी ने घर वालों के लिए कैसे मुसीबत खड़ी की है।
0: थोड़ा हौसला रखो।
2: आप ही बताइए उस बदबख्त ने आखिर किया क्या है?
3: अपनी माँ की एहतराम में मैं बुरा गुमान नहीं कर सकती कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों तवील मुद्दत तक हम निवाला व हम प्याला थे, वरना ये कैसे मुमकिन है कि जासूस घर में मौजूद हो और आपको खबर ना हो? अबू शमीन,
2: जासूस क्या कह रहे हैं ये?
3: मेरी तरफ देखिए, अगर इसका जवाब चाहते हो तो देखिए कि शमीन के अमाल का नतीजा मैं भोगत रही हूँ। बासित के खत की खबर जिसने दी है वो आपकी बेटी है जनाबे फाजल।
2: मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं कि बददुआ ना करो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, कि मुझे माफ कर दो।
3: अगर मेरे कानों ने गलत सुना भी होगा तो आपकी बेटी ने खुद गुनाह का एतराफ किया है। क्या आप अंधे और बहरे हो गए थे जो उसकी चीख और पुकार को बाजार में नहीं सुन पाए? अगर वो बेगुनाह होती तो इस तरह इल्तिजा ना करती। लाल के लिए मोहब्बत कम कर दी आप और आपकी बेटी ने। मेरे शोहर को मुझसे छीन लिया और मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। खुदा तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद करे।
2: मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि ये बद्दुआ ना करो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, कि मुझे माफ कर दो ताकि तुम्हारी ये आह आसमान तक ना पहुँचे। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ।
3: तुम्हारी बेटी ने खून बहाया है, वही करो जो हर कातिल के साथ किया जाता है।
2: उसको कत्ल कर दूं मैं? सामिया, इल्तिजा करता हूं, मेरी मदद करो, कुछ कहो, मुझे निजात दिलाओ। तुम खुद देखो ये क्या कह रही है।
0: मैं क्या कर सकती हूँ फाजिल,

0: जब साहबाजा खुद घर में है तो मैं क्या कर सकती हूँ।
1: हाय अफसोस, हाय अफसोस। खुद साहिब औलाद हो, दिल में औलाद की मोहब्बत रखती हो मोमिना, मैं किस तरह अपनी बेटी को कत्ल करूं? मुझे उसके अलावा कुछ और तलब करो, मेरी इल्तिजा है कि कुछ और तलब करो मुझसे।
2: आपको याद है इसी कोने में बैठे हुए थे जब हिलाल के मरने की खबर आई तो आपने खुदा का शुक्र अदा किया। तो लानत हो उस ईमान पर जो आप रखते हो, जिस तरह मेरे हिलाल की नाहक आबरू रेजी की है उसी तरह मैं भी गली कूचों में जाकर बरहक तुम्हारी बेटी की आबरू रेजी करूंगी।
1: नहीं नहीं, आबरू रेजी के जरिए मेरा इम्तिहान ना लो, मुझ में उसकी ताकत नहीं है। कोई दूसरी चीज मांगो, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, इल्तिजा करता हूं।
2: बाजार यहां से 2 कदम के फासले पर है, या आबरू रेजी बर्दाश्त करो या कत्ल कर दो।

0: फिक्र ना करो, सामान करबला ले जाओगे और लौटाओगे।
1: इमाम के दुश्मन की मदद करना भी इमाम के मुकाबले जंग करने के बराबर है।
0: जानती हूँ।
1: खुदा की कसम, अगर बच्चे का मामला ना हो तो हरगिज़ इस ज़िल्लत को कबूल न करता। नायला, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए।
0: तुम फिक्र ना करो।
1: ये क्या है?
0: डरो नहीं, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। लौटने के बाद हम तीनों सबसे दूर आराम और सुकून की जिंदगी गुजारेंगे।
1: अपना ख्याल रखना।
2: जनाबे ओहद, आपने हिलाल को खत दिया?
3: हिलाल, हिलाल, हिलाल, हिलाल, हिलाल।
4: इस खत को लेते जाओ, मैं भूल गया था। ध्यान से, खुदा की अमान में रहो।
5: नायला, इसने कोई शर्त नहीं रखी?
0: नहीं, इतना मुतमईन होकर गया है कि मुझे नहीं मालूम जब लौटेगा तो जो झूठ मैंने बोला है मैं क्या बोलूंगी।
5: झूठ नहीं बोला है, तुमने सही काम किया है। वो तो बस जिद पर अड़ा हुआ था, तुमने उसकी जान बचाई है।
4: चलें,
5: आओ चलते हैं बेटा, तुम फिक्र मत करो।
6: इस रीश सफेद को असलहा दो, वो जंगजू है। इस जवान को भी असलहा दो। अस्सलामु अलैकुम जनाब ओहद।
4: वालेकुम सलाम जनाब हरीस।
6: वालेकुम अस्सलाम। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारा शौहर मर्द जंगजू होगा। बिनतिया ओहद, शाबाश। अगरचे इसका जाना भी काफी मजाक वाली बात है, लेकिन फिर भी घर में छुपे रहने से बेहतर है।

0: है ना।
1: इब्ने ज़ियाद का सर सलामत रहे, हर शख्स अपनी तवानाई के मुताबिक उनकी मदद कर रहा है, ऐसा नहीं है
0: जी?
1: बेहतर है कि अपना अपना काम करें। इतने ना तजुर्बाकार लोगों को जंगी लिबास पहनाना बहुत सख्त है।
0: बिल्कुल,
1: चलते हैं। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: मेरा बेटा बस थोड़ा सा रह गया है। मेरी बच्चे आज तो तुम्हारी बारी है। 4 दिन सलाला आई थी और आज अली। मेरी जान, जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बाप के लिए तड़प रहा है। ये भी जानती हूँ कि इसका दिल भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है। हाय, अफसोस इसे तुम्हें एक बार गोद में लेने की फुर्सत ना मिली। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हर रोज इसे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। ये महसूस करेगा कि जैसे कि तुम अभी हो। मेरी जान पहुंच गए।
3: सलाम ए खाक में सोने वाले हैं।

0: मैंने उसे सोते हुए कत्ल कर दिया, बदला ले लिया उससे, शायद इससे तुम्हारे टूटे दिल को सुकून मिल जाए। मैंने खुद से अहद किया कि इसके गम में सियाह लिबास भी नहीं पहनूंगा।
1: आ,

सिस्टम है, इतना पैटर्न डिजाइंड है कि किस तरीके से माशरे को आलूदा कर दिया जाए कि ये जवान इमाम के लिए खड़ा ना हो पाए, अतात ना कर पाए। मीडिया सबसे बड़ा हलवा है, जहां उसके फायदे हैं वहां उसके नुकसान भी। मस्जिद लाइव जा रही है, आप मस्जिद से देखते हैं, अपनी पढ़ाई का काम करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें करते हैं, लेकिन उसका इतना सिस्टमेटिक, उसकी इक्वेशन, उसका एल्गोरिथम इतना है कि वो कहीं ना कहीं रूह को आलूदा करता है, कहीं ना कहीं। और वो नक्स जब आ जाए तो इतना आसान नहीं होता उस नक्स को खराब करना। परवरदिगार कुरान में क्या फरमाता है, सूरह बकरा आले इमरान की आयत है कि सारिउ इला मग़फिरतिल्लाह, यानी तुम जल्दी करो, तेजी करो, सबकत लो, किस में? खुदा की मगफरत के लिए, अल्लाह की मगफरत, यानी अल्लाह की मगफरत हासिल करने के लिए तेजी करो। दुनिया कहां कह रही है? दुनिया कह रही है ये लूट लो, ये छीन लो, ये कमा लो, ये बचा लो, ये ले लो, वो ले लो, इसमें जल्दी करो। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि अल्लाह की मगफरत के लिए सबकत हासिल करो, दौड़ो। मगफरत जरूरी है, क्यों? क्योंकि बहरहाल नुक्स आ गया है, नुकसान हो गया है, चीज डैमेज हो चुकी है, तो उसको सही करो पहले। ये सही नहीं होगी तो ये नहीं तुम हासिल कर सकते। मगफरत जरूरी है, मगफरत जरूरी। इसलिए मौलाना मैंने कौन से गुनाह किए, अज़ाने मोहतरम, हमारी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप जवान हैं यकीनन, आप पाक हैं, तभी तो मौला की मस्जिद में बैठे हुए हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, अल्लाह का नबी गलती नहीं करता, नहीं करता, मासूम होता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कौम पर अजाब नहीं आया, थोड़े से नाराज से हो गए, वो थोड़ी सी, वो भी अल्लाह और नबी का मामला, हमें समझ, हम उसको शायद एक्सप्लेन नहीं कर, उसके बावजूद तीन तरह के अंधेरों में चले गए, तीन तरह के, रात, समंदर, मछली का पेट, तीन अंधेरों के अंदर, और कई अरसे तक जिक्र किया, ला इला इल्ला अंत सुभाना का इन्नी कुंतु मिना ज़ालिमीन, कि नहीं, ला इला इल्ला, यानी कोई नहीं है तेरे सिवा, इन्नी कुंतु मिना ज़ालिमीन, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह का नबी है, क्या जुल्म किया? कोई गलती नहीं की, मगर उसके बावजूद खुदा की बारगाह में जो है वो जिक्र किया जा रहा है, पर उन्होंने मैंने जुल्म किया। जब खुदा ने उसको कबूल किया तो क्या कहा? फस्तजबना लहू व नजैनाहू मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, खुदा ने कबूल किया, खुदा कहता हम मोमिन को निजात देते। तो मैं और आप कहां खड़े हुए? तो अल्लाह का नबी है, मैं और आप क्या खड़े, मैं और आप सुबह शाम, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपनी कितनी गलतियां करते हैं, कितनी कोताहियां होती हैं, तो क्या मैं सबकत ले रहा हूं? क्या मैं रोज दौड़ा हूं खुदा की बारगाह में मगफरत के लिए? कितना इंसान से गलती होती है, हाथ में मोबाइल है, कुछ और देखना भी चाह रहा है, कुछ और नजर आ रहा है, जहन कहीं और जा रहा है, जहन एक स्ट्रक्चर्ड है पूरा, इसके अंदर आलूदगी का आ जाना इसका मतलब है कि इसमें अच्छाई नहीं आएगी। अगर जहन पाक नहीं है तो इंसान के ऊपर इल्हाम नहीं होगा। हर वक्त जहन, आप देखें ना कि माशरे में इतना ऐसा सिस्टम किया गया ना, देखिए हमारी तो बेसिक्स नीड्स पूरी नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं आ रही, बिजली का मसला, और माशाल्लाह सड़कों का मसला। इंसान, आप सोचें ना कि आदमी इस डिस्ट्रेस में, और फिर उसके बाद टीवी खोले आप, उसके बाद खबरें देखें, सारी चीजें देखें, एक हुजूम है इंसान के ऊपर, साइकोलॉजिकल वॉर है। उस वॉर के अंदर फिर ड्रग्स, नशे, फसाद अखलाकी, बेहयाई, बुराई, और ये सब कुछ जो हो रहा है, यानी जो थोड़ा सा बच जाए तो उसको आलूदा करो, और जब ये आलूदा हो जाएगा तो ये कैसे कहेगा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कैसे करेगा ये, कैसे करेगा? जहन शाह, सोचने की सलाहियत खत्म है, कहां जाएगा, कैसे अपने इमाम तक पहुंचेगा? यानी इमाम तक, जाने मोहतरम, इमाम तक सिर्फ पहुंचना नहीं है,

पूरा सिस्टम डिजाइन करना है कि इमाम तशरीफ लाए उसके अंदर, कैसे करेंगे आप? ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो जवान बैठे हुए पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए, ठीक है ना, सीज फायर है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, 100 दिन से ज्यादा हो गए, आप इन जवानों की कैफियत देखें, इन जवानों के जहन क्या होंगे, इससे क्या सोचते, वो जो बैठे हुए वहां पे, वो जो बटन दबा रहे हैं, वो कौन है? वो फर्क है निजामे इलाही में और निजामे शैतान में। वहां पर जब कोई चीज बन रही है, असला बन रहा है, टेक्नोलॉजी बन रही है, तो पता नहीं रात को नशा कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। यहां पर जब मिसाइल बन रहा है तो तैरानी मुकद्दम पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, फर्क है ना। यानी जब तक पाक नहीं होगा तो ये सिस्टम उतरेगा कैसे? और तभी तो ऐसा सिस्टम उतरा कि उनकी समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा मिसाइल है, ये क्यों उड़ाता है, ये कौन सा रेस का सिस्टम है जो F-35 को गिरा रहा है, कौन है ये? वो ये मुमकिन है जाने मोहतरम? अब हमारे यहां बहुत सारे लोग, रशिया ने मदद की होगी, चाइना ने मदद की होगी, गुलाम जहन गुलाम ही सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि अली वाले दुनिया को चलाने के लिए हैं। जाने वाला हूं खूब अपने आप को कमतर क्यों समझे इंसान? यही तो टाइम है कि जहां पर विलायत अली इब्ने अबी तालिब पूरी दुनिया को समझाने का वक्त है कि देखो अगर विलायत हो तो फिर ये होता है। 57 मुल्कों में से जब विलायत अली हो तो यहां पर कर्रार के मानने वाले हैं, गैर फर्रार के मानने वाले हैं। ऐसे ही है, यहां भागता कोई नहीं है, यहां सीने पे तीर खाने वाले लोग हैं, यहां मौत फना नहीं है, यहां मौत बका है, बका। डेफिनेशन फर्क हो गई ना। तो जब आप अपने आप को ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे कि आपका जहन पाकीजा हो, पाकीजा हो, तब आप ऐसा करेंगे, तब दुश्मन खौफ खाएगा। दुश्मन खौफ खा चुका है इसका, और खौफ है दुश्मन में कुछ भी नहीं, खोखला होता है। और ये सब कुछ इसी मजलिस और अदादारी से, सब कुछ यहीं से है। एक एक सिस्टम की बात सब सैयदुश्शहदा के दर से मिलती है, जहां 12 साल का बच्चा जो ये कहे कि मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा मीठी है, तो वो मौत से भागते नहीं है, वो उस शहद को चखना चाहते हैं। मौत खौफ नहीं है, इसीलिए टेक्नोलॉजी, जदीद असलहा ताकत नहीं है, असल ताकत इरादा है, इरादा। अगर जिस कौम के पास इरादा हो उसे कोई रोक नहीं सकता। वैज़ानो दुश्मन यही चाहता है कि आपके इरादों को ज़ईफ़ कर दे, कमज़ोर कर दे, आपके जहन को गुनाह की तरफ ले जाए, माशरे को फंसा दे। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इश्यूज़ यही हैं कि इनको क्रिएटिव नहीं होने दो। आपके सामने बहरहाल मैं खबरें पढ़ने नहीं आया, बोले मौलाना साहब मजलिस पढ़ रहे हैं, खबरें पढ़ रहे हैं, नहीं खबरें तो आप मजलिस ज़्यादा सुबह शाम सुन रहे हैं। देखिए 47 ईयर्स सेंक्शंस पाबंदी, मगर कहीं लगता है? अच्छा बहुत सारे लोगों ने तो देखा भी नहीं हुआ था, उन्होंने तो वो वीडियोस देखी कि मिसाइल पड़ रहे हैं, अच्छा बिल्डिंगें, बिल्डिंगें हैं वो, हम तो समझ रहे थे गांव देहात है, वो ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं, पता नहीं कैसे कैसे रोड है इनके पास। तो लोगों ने बोला ये तो बड़ा था। उन्होंने 47 ईयर्स में गुलामी नहीं की, उन्होंने सिस्टम को डेवलप किया, उन्होंने सिर्फ दुआएं नहीं मांगी अल्लाह जल, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को उस मकाम पे ले जाएं कि इमाम तशरीफ लेकर आए, इमाम है, सब कुछ यही है।

शेर ये खंजर क्या है, बस देख लो तेवर क्या है। पैरों से मसल दून करती 9 लाख का लश्कर क्या है, 9 लाख का लश्कर क्या है। सर